आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: गोगा, ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

में घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार

जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

लौट आए

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आप सभी की आज वंशिका और आ चुकी हूं फिर से मुलाकात करने के लिए आप सभी से। और आज मैं पकड़ के लाई हूं आज परमार जी को, वो भी रेडियो गा
1: जी। और मैं अपने प्यारे दोस्तों को और अपने चाहने वालों को और अपने सभी मित्रों को नमस्कार भी कहना चाहूंगा। फिल्मों की बातें और फिल्मों का इतिहास, उसी के बारे में बातें करना चाहूंगा। तो सबसे पहले वंशिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा सिनेमा की दुनिया बहुत रंगीन और दिलचस्प होती है। इसमें फिल्मों की नई कहानियां, कलाकारों का जीवन और पर्दे के पीछे का कड़ा संघर्ष शामिल होता है। दर्शक सिर्फ अपने पसंदीदा सितारों को देखने ही नहीं, बल्कि अच्छी कहानियों का आनंद लेने के लिए भी सिनेमाघर में जाते हैं। सिनेमा की कुछ खास बातों के बारे में मैं आप नजर डालना चाहूंगा, जैसे बॉक्स ऑफिस। आजकल फिल्मों के सीक्वल और दमदार कहानियां बॉक्स ऑफिस पर अच्छा व्यापार कर रही हैं। संघर्ष और सच्चाई की चमक दमक के पीछे कलाकारों की कड़ी मेहनत और असल जीवन के संघर्ष छिपे होते हैं। और इन कहानियों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। फिल्में समाज को जोड़ने, मनोरंजन करने और महत्वपूर्ण संदेश देने का काम भी करती हैं। यदि आप किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री या पुरानी फिल्म या सिनेमा के किसी खास कवर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इस पर जरूर बहुत अच्छी तरह रोशनी भी डालूंगा। तो वंशिका जी, शुरू करते हैं आगे प्रोग्राम और देखिए कौन कौन जुड़े हुए हैं। फिर मैं
0: बहुत सारे लिसनर जुड़ चुके हैं, निकलस जी जुड़ चुके हैं, निकलस जी के साथ साथ सर्वजीत सेठी जी, गजानन सलोकार जी, आरिफ सिंधी जी, राजेश कुमार जी, रमकेश जी और बाबूलाल जी, बहुत सारे लिसनर्स हैं। बट आप सभी का वेलकम करेंगे एक गाने के बाद में, जो कि पसंद है परमार जी की।
1: देखिए देखिए देखिए वंशिका जी, मैं अपनी पसंद का एक गाना सुनाऊंगा आपको। बताया मेरी पसंद होते हैं पुराने, और पुराने के हर दिल लजीज और खूबसूरत गाने होते हैं मेरी पसंद के। तो उन्हीं गानों में से मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा अभी अपने सभी प्यारे दोस्तों, मित्रों और अपने भाई बहनों को। तो वंशिका जी सुना दीजिए प्लीज
0: जी। तो जरूर सुनाते हैं परमार जी आपकी पसंद को, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारी प्रश्न सुनवाई फरमान जी, कहाँ से लेके आते हैं गाना आप?
1: देखिए मनीषिका जी, बात होती है दिल की, और ये दिल में मेरे अच्छी तरह और खूबसूरत तरीके से बसे भी हुए हैं ये सभी गाने। और ये जो गाने मैं सुनाता हूँ शायद मेरे को सुनते होंगे, और इसके बारे में आप देखिए कोई फीडबैक आया है।
0: वंशिका जी, आज अमन जी के शो में भी हम जुड़े थे, बिल्कुल, और आपके शो में भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और लिखते हैं नमस्ते जी, नमस्ते कह रहे हैं आपको,
1: बहुत बहुत नमस्ते संदीप कुमार जी, और
0: संदीप
1: बहुत बहुत
0: सुतार जी,
1: शुक्रिया
0: संदीप सुतार जी।
1: इतनी तारीफ करने के लिए सत्तार साहब।
0: और यहाँ पे
1: तो
0: लिखते हैं गुड आफ्टरनून, हम भी जुड़ गए हैं इस सिनेमा के ज्ञान वर्धक प्रोग्राम में, स्वागत है आपका। और आरिफ संदीप जी लिखते हैं, आरजे प्रमार जी बहुत ही प्यारी पसंद सुनवाई आपने, और आपको और आरजे वंश
1: सिंधी साहब बहुत बहुत सलाम भी मैं कहना चाहूंगा आपको, और बहुत
0: जी
1: बहुत शुक्रिया आपकी वजह से।
0: जी रमकेश जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून आरजे वंशिका जी, प्रमाण सर जी, पुराने गानों का मजा लेने के लिए हम सुबह से जुड़े हुए हैं और अब मजे ले रहे हैं, और अभी आपने जो गाना सुनाया प्रमाण जी, वो भी बहुत ही लाजवाब लगा।
1: रामकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं सभी भाई और बहनों को यही कहना चाहूंगा कि आप जुड़ा करें और अपने दिल की बातों को साझा किया कीजिए मेरे साथ और इस प्रोग्राम के साथ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आगे देखिए पुष्कर जी क्या है।
0: और निकलस जी लिखते हैं, वेरी गुड आफ्टरनून आरजे वंशिका जी, आरजे प्रमाण सर जी, वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, हम भी आपका स्वागत करते हैं। गजानन सलोकार जी लिखते हैं, आरजे वंशिका जी और प्रमाण सर जी, सभी साथियों को प्यार भर नमस्कार।
1: कौन है?
0: गजानन सलोकार जी लिखते हैं, नमस्कार हाँ आपको, और उमरा अटाली तहसील बॉर्डर से हम भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी। और
1: गजानन सलाहकार जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए, और इनकी कल बिटिया का जन्म
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी भी मैं आपको बधाइयां
0: बधाइयां देना चाहेंगे।
1: नहीं दे पाया था, उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से बहुत बधाइयां देता हूँ। और आशा करता हूँ हमारी बेटी फलेगी फूलेगी और बहुत ही खुश रहेगी और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेगी। गजानन सलाहकार जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। राजेश कुमार जी अभी लिखते हैं, गाना बहुत प्यारा लगा आज प्रमा जी, राधे राधे। और बाबूलाल जी लिखते हैं, वंशिका दीदी अच्छा जी बिल्कुल, वैसे नौकर तो नहीं है बीवी के आजकल मेरे ख्याल से। और सब जी सेठी जी का फीडबैक सुन लेते हैं।
2: तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों से दम सर आंखों पर। परमार सर जी बहुत ही लाजवाब गीत आपने सुना है सर, बहुत ही बढ़िया लगा वो गीत,
1: देखिए
2: तो
1: देखिए
2: चलते रहे
1: सर।
2: रेडियो गाना जो बना दे सर।
3: भूल गए सब कसमें वादे, क्या तुमको कुछ याद है, प्यार यही तक था अपना,
1: ये आवाज भी काफी
3: कुछ इस प्यार के बाद भी है,
4: ये क्या सवाल किया
1: जी। शायद इन्होंने वो जो हमारा प्रोग्राम थी जी, आपकी खूबसूरत आवाज का राज और कैसे गाते हैं इतने खूबसूरत
0: जी जी
1: आवाज में गाने, बताइएगा जरूर।
0: और निकला जी जुड़ चुके हैं फीडबैक के साथ में, वो भी सुन लेते हैं।
5: वेरी गुड आफ्टरनून

0: शक हो तो इस प्यार की मैं पहचान तुम्हें दे सकता।
1: 19वीं सदी
0: तुम मांगो तो दिल क्या है ये जान तुम्हें दे सकता।
1: भारतीय सिनेमा से जुड़े कुछ मुख्य पहलू मैं आपको बताना चाहूँ, यानी जिन्होंने इसका विकास किया था वो दादा साहब फाल्के ने भारत में फिल्म निर्माण और निर्देशक और लेखन की नींव रखी थी।
2: बिल्कुल,
1: वो गूंगी से और बोलती हुई फिल्मों का शुरुआती और दौर मूक फिल्मों का था, जिसके बाद आलम आरा जैसी बोलती फिल्मों का युग भी आया।
2: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। और आलम आरा के बारे में तो हमने बहुत बार पढ़ा है, और आप सभी से कहना चाहूंगी कोई जानकारी ले जानना चाहे सिनेमा जगत से जुड़ी हुई तो आज प्रमाण जिसे कही है गूगल की तरह ढूंढ के निकालते हैं अपने दिमाग में से ये जानकारी को, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ भी पूछिए आप फिल्मों के बारे में, कोई भी प्रश्न पूछिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा और डिटेल में दूंगा, विस्तार से बताऊंगा आपको। और सरोजी सेठी जी, आपका जो फीडबैक होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और निकोलस जी के फीडबैक हो तो कहना ही क्या। निकोलस जी
2: बहुत ही प्यारे फीडबैक लेके आते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारे गाने भी पहुंच चुके हैं हमारे पास, आप सभी से भी कहना चाहूंगी आप से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे सॉन्ग रिक्वेस्ट के मेथड से फरमाइशें भेज सकते हैं, चाहे तो रेडियो हॉस्टल एप्लीकेशन के व्हाट्सएप रेडियो हॉस्टल एप्लीकेशन से मैसेज भेज सकते हैं, और चाहे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8404841232 से भी हमारे को मैसेजेस भेज सकते हैं अपने फीडबैक्स के थ्रू, अब हमारे शो का शामिल हो सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, और भी बहुत सारे लिखना जुड़ चुके हैं, रोहित सिंह जी जुड़ चुके हैं, रोहित सिंह जी आपका भी बहुत वेलकम करना चाहूंगी। प्रमार जी, रोहित जी हमेशा जुड़ते हैं डेली,
1: रोहित जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि रोहित जी एक तो गाना बहुत खूबसूरत गाते हैं जो मुझे बहुत पसंद होता है, और ये भाई एक हमारी सौरभ जी सेठी जी है, इनके गाने भी बहुत ही खूबसूरत प्यारे और पुराने होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रोहित सिंह जी और सौरभ जी सेठी जी, आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और निकोलस जी, देखो देखिए बात होती है हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी बात किसी तरह से हिंदी में।

0: भाषा को सीख रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है जान के कि बाहर की लिसनर्स भी हमारे।
1: क्या कुछ पूछना चाहते हैं कोई श्रोता हमसे, कुछ और बातें?
0: जी वैसे तो अभी तो बहुत से लिसनर।
2: थोड़ा इंतजार करो, इंतजार करो।
0: मुझे किन्होंने भेजा है, राजेश कुमार जी ने। छोड़ दो अचल जमाना क्या कहेगा।
1: वाह जी वाह, राजेश जी कमाली कर दिया आपने। और आपकी जो पसंद का तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतना खूबसूरत इतना प्यारा गाना आप लेकर आए जो दिलो दिमाग पर छा गया। अरे गाना मेरी पसंद का भी है मनीषा जी, तो सुनाइए गाना राजेश जी की पसंद का।
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए। छोड़ दो जमाना क्या कहेगा, जमाना ये कहेगा कि रेडियो हॉस्टल पे जाओ और गाने सुन लो, है ना प्रभात जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: सदाओं का जमाना।
1: वाह वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत प्यारी फरमाइश थी मनीष का जी, दिल बस बाग बाग हो गया। मतलब बड़ा ध्यान लगाकर इस गाने को सुन रहा था। तो वंशिका जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट निर्माण के उदय में मनोरंजन उद्योग को रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए रोजगार के कई अवसर प्रदान करने में मदद की है, तो ये इस फिल्मी दुनिया से रोजगार मिल सकता है। और उसके बारे में आपके को कुछ इस विषय पर भी रोशनी डालना चाहूंगा। फिल्म निर्देशन हो के लिए फिल्म निर्देशक से लेकर फिल्म के संपादक या कॉस्ट्यूम डिजाइनर, पटकथा लेखक और छायाकार तक आप अपने सपनों को साकार करने के लिए मनचाहा कैरियर चुन भी सकते हैं। तो एक श्रोता का मेरे पास अभी अचानक मैसेज आया मेरे पास, तो वो पूछ रहा था मुझसे, तो श्रोता जी हमसे पूछ रहे हैं ये फिल्म में दुनिया में रोजगार कैसे मिलेगा,
2: हमें बताइए, हमें भी जाना है। हाँ,
1: तो सुनिए, रोजगार के लिए भी कुछ चांसेस हैं फिल्मी दुनिया में। तो फिल्मी दुनिया यानी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए एक मजबूत पोर्टफोलियो
2: बनाना होता है।
1: पड़ता है
2: जी, यानी कि रिज्यूम तरीके का बनाना होता है जिसमें अपनी जानकारी डालते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी पिक्चर होती है हर साइट से, और इसके साथ साथ में ये भी बताना होता है कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई करी है और किस प्रकार की एक्टिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ऑडिशन दिए हैं, मुझे पता है जानकारी।
1: MDA की मदद से एक्टिंग या फिल्म मेकिंग का प्रशिक्षण ले और कास्टिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस से जुड़े, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे
2: कि DKP प्रोडक्शन हो गए या बहुत सारे कास्टिंग हैं जैसे बालाजी हैं, आप सभी को ना इंस्टाग्राम पे
1: किनोस्फीयर पर एक्टिव रहकर नियमित रूप से ऑडिशन दें और अपनी भूमिका भी चुने, जैसे राइटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गया, एडिटर हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गई या असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी ढेरों काम होते हैं जो आप कर सकते हैं। बस आप में थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रतिभा होना चाहिए जिसकी वजह से आप इससे जुड़ सकते हैं। तो और इसके साथ साथ मैं यही भी कहना चाहूंगा, किसी का श्रोता का अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है तो कोई
2: जी बिल्कुल प्रश्न आए क्यों नहीं आए
1: हैं,
2: प्रश्न तो बहुत आए। संदीप सुतार जी का प्रश्न है, आज प्रमाण जी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, आदमी मुसाफिर है आता है जाता है, ये गाना फिल्म में किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है? ये गाना गाने वाले जो छोटी बच्ची दिखाई दे रही है किरदार में वह कौन है, और क्या लिखते हैं, और वह कौन है, और कहाँ भाग गया क्वेश्चन ही भाग गया
1: देखिए
2: क्वेश्चन भाग गया मुझसे। ओके जी, दिखाई दे रही है वह कौन है, उसका नाम क्या है, और भी बातें इसके बारे में जानना चाहेंगे हम, तो प्लीज बताइएगा। और सबजी सेठी जी लिखते प्रमाण जी, आज मुझे मनोज कुमार जी की जानकारी चाहिए, लिख के रख लीजिए किन किन की जानकारी आ रही, तो मनोज कुमार जी की
1: बिल्कुल, मनोज कुमार जी और
2: एक आदमी मुसाफिर है गाने में,
1: अपना मूवी का गाना है ये जो आदमी मुसाफिर, इसके बारे में मैं जरूर रोशनी डालूंगा। तो सबसे पहले आप वंशिका जी किसी
2: फीडबैक आ चुके हैं, गाने सुनाएंगे,
1: फीडबैक सुनाएंगे।
2: निकलेस जी लिखते हैं, आज वंशिका जी, आज प्रमाण जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी, बॉलीवुड स्टोरियां सुन के अच्छा लगता है। और रणवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वंशिका जी हम भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, रणवीर सिंह जी मुरादाबाद यूपी से, स्वागत है आपका भी। और यहाँ पर राजेश कुमार जी लिखते हैं, वंशिका जी हम आपने हमारे गाने को प्ले किया, शुक्रिया। अगला गाना चलते हैं जो मुझे यहाँ दिख रहा है किनका, तरसेम जी का मतलब निकल गया, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे, सभी श्रोताओं को डेडिकेट करते हैं, सुनते हैं कैसा गाना है, एंजॉय कीजिए।
1: देखिए वंशिका जी, ये जो गाना है अमानत फिल्म का है, मनोज कुमार जी पर फिल्माया गया गाना है ये, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।
2: अच्छा।
1: तो श्रोता बड़ी मुझे अच्छा गाना ढूंढ कर लाया है, तो सुनाइए सुनाइए।
2: ओके जी।

0: छानते नहीं हर एक गली की खाक।
1: बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिला मोहम्मद रफी जी की आवाज में। एक से बढ़कर गाने आ रहे हैं ना प्रमाण जी, आपका दिल क्या खुश हो रहा है?
2: बिल्कुल मेरा दिल तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, मेरे श्रोताओं की पसंद सुन सुन कर रही है। गाना ये किनकी पसंद का था?
1: ये पसंद थी हमारे पास तरसेम जी।
2: तरसेम जी कम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत प्यारा गाना सुनने के लिए, और मैंने सुनवाया भी। अच्छा तो अनुष्का जी, मैं संदीप सितार जी के प्रश्न की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा था, ये आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, किसके ऊपर फिल्माया गया है? तो सबसे पहले संदीप सितार जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये फिल्म थी अपनापन, जो 1977 यानी 1977 में रिलीज हुई थी। और ये इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित जी ने निभाई थी। और इस गाने को जिन पर फिल्माया गया था वो दो हमारे सुपर, एक तो सुपर सुधीर दलवी जी होते थे जो बहुत ही अच्छे एक्टर और कलाकार होते थे, और उनके साथ जो बिटिया छोटी सी बच्ची ने रोल निभाया था उसका नाम था निवेदिता जोशी। वो निवेदिता जोशी और सुधीर दलवी जी पर फिल्माया गया गाना था, और फिल्म थी अपनापन 1977 में रिलीज हुई थी। और जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित इसके एक मुख्य कलाकार थे। सुधीर दलवी और निवेदिता जोशी ने भी फिल्म में काम किया था। और इस गाने के गायक थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी, और गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो दोस्तों, ये आपने और हमारे संदीप सितार जी को सुन ली होगी अपने प्रश्न का जवाब। तो इसके बाद मैं सुरेश जी सेठी जी के बारे में ने कहा था, मनोज कुमार जी के बारे में बताऊंगा अनुष्का जी। तो ये संदीप सितार जी का देखिए कोई गाना आया
1: जी, बिल्कुल संदीप सितार जी की पसंद भी आ रही है मेरे पास।
2: तो सुनाइए सुनाइए संदीप सितार जी की पसंद।
1: बाकी अकेली मोहे छोड़ रहा छेड़ रहा छलिया, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे, जेल यात्रा मूवी का सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए। बाकी अकेले किसी को ना छेड़ा करें, बिल्कुल बुरा लगता है। जेल यात्रा मूवी का बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया संदीप जी, एंजॉय कीजिए।

0: निर्देशक और पटकथा लेखक भारतमाली।
1: आज बाहों की इन्हीं लहरों में बह जाने दो।
0: और 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में उनका निधन हुआ, ये इनकी बातें थी। श्री राम महान नेता दिलीप कुमार की फिल्म शबनम 1949 में जो आई थी, वो मनोज कुमार से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम रखा, यानी उस फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम रखा मनोज कुमार। शुरुआत में देश के विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से पूरी की और फिर फिल्मों में किस्मत अजमाई में से मुंबई आए। उन्होंने फिल्म फैशन आई थी 1957 में और वो उनके करियर की सबसे पहली फिल्म थी। उनकी प्रसिद्ध फिल्में आई हैं वंशिका जी, शुरुआती दौर में उनकी फिल्म आई थी हरियाली और रास्ता, जो बहुत ही हिट फिल्म थी, जो 1962 में आई थी। उसके बाद एक हॉरर मूवी आई थी वो कौन थी, जो 1964 में रिलीज हुई, और उसके बाद माला सिन्हा के साथ उनके एक और
1: अपना तूफान से रिश्ता
0: रिलीज हुई थी। और उन्होंने रोमांटिक और हर टाइप
1: है किनारों से नहीं
2: चांदनी चांद से होती
0: तक सभी के दिलों पर छाई हुई है। लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान और जय किसान से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी, निर्देशित की थी, और अभिनेता इस फिल्म में उन्हें भारत कुमार के नाम से भी पहचान दिलाई गई। अन्य उनकी बहुत बेहतरीन फिल्में आई, जैसे शहीद 1965 में, जिसमें गाना था मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह आई थी, उन्होंने शहीद में भगत सिंह की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पूर्व व पश्चिम 1970 में, रोटी और कपड़ा और मकान 1974 में, और क्रांति 1981 में उन्होंने इस तरह की देशभक्ति पूर्ण फिल्में बनाकर एक इतिहास निर्देशक भी बहुत ही अच्छा करते थे। और उनको जो पुरस्कार मिले 1952 में देश के चौथे सम्मान मिला, और उस पुरस्कार का नाम था पद्मश्री। और वर्ष 2000
3: सुनो सुनो मेरे यार, यहाँ बजता संगीत शानदार, मन को जो छू जाए दिल में बस जाए, नाचो गाओ झूमो मस्ती में झूमो।
4: बिल्कुल, और आरिफ चिल्ली से गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, बट बीच बीच में नेटवर्क इशू है। जी हाँ, हम क्या कर सकते हैं,
0: आज आरजे अमन जी का शो भी नहीं होगा उसको, और मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहूंगा कि वंशिका जी का शो शायद 7:30 बजे के आसपास होगा,
4: शायद, पक्का नहीं पता मुझे।
0: और अगर वो प्रोग्राम हुआ तो वो लाइव फरमाइश पर आधारित होगा, वंशिका जी का प्रोग्राम रेडियो हॉटस्टार पर। और दोस्तों और मेरे भाई बहन, आपसे मैं आपसे एक और इल्तिजाई रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी मेरे बारे में कुछ फीडबैक दीजिए वंशिका जी के प्रोग्राम में और अमन जी के प्रोग्राम में।
4: वंशिका जी तो यहीं बैठी हैं,
0: तो जिससे मैं रेडियो स्टार पे
3: कुछ सब कुछ मिलेगा गाना बजाते रहो दिल से।
0: एक प्यारे स्टाइल का प्रोग्राम करना चाहता हूँ मैं रेडियो स्टार पे, जो आप सभी के दिलों पर छा जाएगा। तो जब तक आप फीडबैक नहीं देगा, फीडबैक के लिए कोशिश भी कीजिएगा। और वंशिका जी देखिए भागे आप
4: जी, बिल्कुल अभी तो मैं ये कह रही थी, अभी तो हम ख्याल से हमें इंटरनेट को पकड़ के रखना पड़ेगा, भागे जा रहा है और रुक के राजी ही रही है। और यहाँ फीडबैक के बगैर लिखते हैं वंशिका जी, आरजे प्रमाण जी और वंशिका जी आपको नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत नमस्ते आपको भी। और व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं कुछ दोस्त, जैसे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं, कितनी देर से प्रोग्राम पर हैं आप तो पता ही नहीं लगा, मैं रेडियो गाना पर बैठा रह गया और रेडियो हॉस्टल सुनते सुनते मुझे देर हो गई, गाने की तरफ आया ही नहीं। अच्छा जी, यही बात है, मैंने कल बताया था कि गाने पे चलेंगे हम, गाने पे आपको सुनने को मिलेगा, तो कोई बात नहीं, बट अब तो आप सुन रहे हैं ना। बबली अनजान जी कहते हैं, गीता कश्यप जी हम भी आपके साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका।
0: और बहुत बहुत शुक्रिया बबीता अनजान जी,
4: बबली अनजान और गीता कश्यप जी। और एक और बार बताना चाहूंगी, कल आप सभी मुझे ढूंढते मत रहिएगा कि वंशिका जी कहाँ चली गई है, 4 बजे लेट आई है। जी मैं कल दोपहर को 1:30 पे आने वाली हूँ, तो जरूर जुड़िएगा रेडियो हॉटस्टार से दोपहर को 1:30 पे। फरमाइशें लूंगी आप सभी की 11 से लेकर 12 के बीच में। और कहते हैं कि फिर विष्णु चंद्र जी लिखते हैं बहुत अच्छे स्वभाव है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो आपकी बहुत अच्छा लगा। और मुझे पद्मनी कोल्हापुरी जी के बारे में जानना है।
0: ये अगली बार से गाने के बाद मैं जरूर बताऊंगा।

0: कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे कुछ अपनी तबीयत ना सा
1: बढ़िया फरमाइशी लाइव फरमाइश का प्रोग्राम हो
0: जी कोशिश पूरी चलेगी। अगर होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा
1: और सभी श्रोता से आप भी मेरे बारे में अच्छे अच्छे फीडबैक रेडियो स्टार पर रेडियो गाना पर दें वंशिका जी और अमन जी को जिससे मैं भी आपके प्रोग्राम में आ सकूं। रेडियो
0: और इंटरनेट बहुत दिक्कत कर रहा है उसके लिए तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि संदीप सुतार जी भी लिखते हैं प्रमाण जी आपने मेरे छोटे सवाल का जवाब दिया और मेरी फरमाइश को सुनवाया उसके लिए धन्यवाद पर अफसोस मैं गाना ठीक से नहीं सुन पाया क्योंकि बीच में नेटवर्क इशू हो रहा है। हम ब्रॉडकास्ट पे मतलब पॉडकास्ट पे सुन लेंगे जी बिल्कुल नेटवर्क की तो बहुत दिक्कत है मैं क्या कहूँ मैं बहुत मेरे कंट्रोल से बाहर रही है। और सविजी सिटी जी का फीडबैक है वो भी सुन लेंगे।
2: मैम और परमार सर जी आप दोनों को नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: और परमार सर जी आपने मनोज कुमार जी के बारे में जानकारी दी बहुत अच्छा लगा और सर मैंने गाना भेज दिया है
0: बिल्कुल
2: वंशिका मैम आप मेरे गीत को चलाइएगा।
0: जी जी जरूर कोशिश करेंगे जरूर
2: डिस्टर्ब कर रहे हैं वंशिका मैम और कुमार सर जी तो जी हाँ। रेडियो गाना जो बना दे सबको दीवाना
1: बिल्कुल सही कहा सरवजीत सेठी जी ने नेट के ऊपर
0: अगर नेट सही से नहीं चल पाया
1: और
0: तो
1: मैं कोशिश यही कर रहा हूँ वंशिका जी साहब से कोशिश यही कर रही है कि नेट को पकड़ के बैठे तो इन्होंने एक तरफ से टांगे पकड़ी हुई है और एक तरफ से हाथ तो इस नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी फिसल जा रहा है बहुत ताकतवर नेट हो रहा है आज
0: जी बिल्कुल इतना ताकतवर तो हो रहा है कि चल गई राजनीति
1: सुनाइए वंशिका जी किसी और के
0: जी राजेश कुमार ने लिखते ओल्ड इज गोल्ड पसंद सुनने को मिली है और इसी बात पर अगला गाना सुनवाती हूँ। ये पसंद है मेरे पास किनकी ये है आरी सिंधी जी की पसंद। दीदी प्यार दे प्यार दे प्यार दे हमें प्यार दे हाँ दो ना कहाँ गए एंजॉय कीजिए इस प्यारी सी पसंद को। शराबी मूवी का बहुत ही लाजवाब गाना।

0: बिल्कुल दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे, है ना कुमार जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गाना। किसकी पसंद का खाना था अनुष्का जी?
0: जी ये पसंद मैंने सुनवाई है आपको, आप सभी को, आरिफ सिंधी जी की।
1: आरिफ सिंधी जी, आपकी पसंद का गाना बेहद खूबसूरत और लाजवाब था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे दिखाई दे रहा है शायद निकलेस जी ने भी कोई गाना भेजा है, वो भी बहुत ही
0: वो
1: खूबसूरत
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: प्ले करेंगे, फीडबैक
1: सबसे पहले आप
0: देखते हैं।
1: फीडबैक दे दीजिए और फिर मैं विष्णु जी की बात का जवाब भी देना चाहूंगा, पद्मिनी कोला जी पुरी जी के बारे में।
0: सवजी सेठी जी लिखते खूबसूरत गीत है, और निकलेस जी लिखते हैं आज वंशिका जी वंडरफुल सॉन्ग, अमिताभ बच्चन जी पे फिल्माया गया, अमिताभ जी पे था ये
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल।
1: शराबी फिल्म का गाना था।
0: और कहते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना, और आज प्रमा जी जो बॉलीवुड की खबरें बता रहे हैं, तो जानकारी बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आरिफ जी कहते हैं वंशिका जी आपने मेरे गाने को प्ले किया, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और राजेश कुमार जी कहते हैं लाजवाब, ओल्ड इज गोल्ड पसंद सुनने को मिली है, बिल्कुल। और प्रमा जी आप बताइए पद्मनी पद्मनी कोल्हापुरी जी के बारे में।
1: देखिए देखिए वंशिका जी, ऐसे ही 1980 का जो दशक था उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी जी एक बहुत ही,
2: सुन रहे हैं रेडियो गाना, और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो
1: ये अभिनेत्री बन चुकी थी और गायिका भी थी, जिन्होंने प्रेम रॉ साफ तराजू और प्यार, जो उनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1965।
2: गाना बजाते रहो दिल से, यूर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना, थैंक यू।
1: लता मंगेशकर व आशा भोसले की रिश्तेदार भी थी।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी हाँ जी। पिता का नाम था पंडित पंडरी नाथ कोल्हापुरे, एक शास्त्रीय गायक थे, और माता एयर इंडिया में काम किया करती थी। संगीत से उनका जो नाता बना वो प्रसिद्ध गायक लता मंगेशकर और आशा भोसले में उनकी शुरुआत हुई, और वो जो रिश्ते में उनकी बुआ भी लगती थी, यानी आशा भोसले जी।

0: और लता मंगेशकर जी। उन्होंने बचपन में एक गाना भी गाया था जिसे फिल्म यादों की बारात में कोर्स के रूप में आप देख भी सकते हैं। उनका जो अभिनय का सफर जब शुरू हुआ तो उन्होंने बाल कलाकार से अपना अभिनय करना शुरू किया। वो एक फिल्म आई थी बारिश, जितेंद्र और हेमा मालिनी जी की फिल्म थी।
1: जी
0: उन्होंने
1: जी
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: उसमें बचपन में बचपन का मैं छोटे बेबी के रूप में अपना अभिनय शुरू किया था। उसके बाद आई थी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 1977 में, उन्होंने बाल कलाकार के रूप में उसमें भी काम किया। और उसके बाद मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म जमाने को दिखाना है में लीड रोल भी किया। फिल्म इंसाफ का तराजू में भी उन्हें लीड रोल मिला राजू बर्जी के साथ, और जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। बड़ी सफलता उन्हें कब मिली, राज कपूर जी की फिल्म आई थी प्रेम रोग 1982 में, और उन्हें बहुत ही खूबसूरत प्यारा अभिनय किया था। और जब उनकी इस उम्र सिर्फ 17 साल की थी
1: अच्छा
0: प्रेम रोग,
1: जी, इतनी कम उम्र में काम किया उन्होंने।
0: जब उन्होंने प्रेम रोग की थी, जिसमें गाना नहीं भवने ने खिलाया फूल
1: जी जी
0: फूल को लेकर राजकुमार, वो फिल्म बात कर रहा हूँ प्रेम रोग। और फिल्म फेयर के का उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला था। प्रेम रोग, इंसाफ का तराजू, प्यार झुकता नहीं, विधाता, वो 7 दिन और 100 तक फिल्म में उन्होंने दमदार अभिनय कर कर अपना लोहा फिल्म जगत में जमा दिया। तो उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से, यानी जिन्हें प्यार से टूटू शर्मा भी कहते थे, उनसे
1: टू
0: उनका
1: टू
0: विवाह,
1: प्यार से टूटू
0: टूटू शर्मा
1: टू
0: उनका,
1: शर्मा।
0: हाँ जी हाँ,
1: अच्छा जी
0: उनके एक संतान हुई, उनके एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक शर्मा है,
1: जी जी
0: और जो अभिनय की दृष्टि दुनिया में जुड़े हुए हैं
1: श्रद्धा
0: प्रियांक।
1: कपूर जी की मासी है ना ये, है ना।
0: हाँ जी हाँ बिल्कुल। यदि आप पद्मिनी कोल्हापुरी की किसी और खास फिल्म की या उनके गायक परिवार के किस्सों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। और मुझे अब दिखाई दे रहे हैं निकलेस जी, और निकलेस जी का जो गाना है वो मेरी पसंद का बेहद खूबसूरत गाना है। और निकलेस जी कहाँ से ढूंढ के लाए हैं इस गाने को, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए वंशिका जी।
1: जी तो गाना लिखे आए हैं जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया साथ दिलदार गया, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे। और
0: ये
1: इनकी
0: कौन सा गाना
1: वॉइस
0: है, कौन
1: महेश
0: सा
1: है,
0: गाना है?
1: जिंदगी देने वाले सुन वॉइस महेश के साथ है, सुनते हैं।
2: वेरी गुड आफ्टरनून आर जे वंशिका जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर आर जे फरमाओ।
0: बहुत बहुत
2: आई
0: शुक्रिया।
2: वाज रिक्वेस्टिंग वन सॉन्ग, इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी बट आई वांट टू लिसन a new version. If you can, I already wrote down in
1: न्यू वर्जन
2: my
1: सुनना चाहेंगे या
2: choice
1: पुराने वाला?
2: something like that, जाना के देना वाले तो तारा दुनिया से दिल भर गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: थैंक यू
0: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत
2: सो
0: बोले,
2: वेरी
0: बहुत
2: मच, बी
0: बिल्कुल
2: गुड टू
0: बहुत ही
2: एंजॉय द
0: खूबसूरत
2: डे
0: आवाज में
2: विद मिस्टर
0: उन्होंने अपना
2: परमा।
0: फीडबैक दिया और बहुत ही खूबसूरत।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। अब बोलिए प्रमार जी।
0: मैं कह रहा था वह निखिल जी ने अपना जो कार्य की फरमाइश बताई बहुत ही खूबसूरत आवाज और अंदाज में बताई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आई लाइक इट वेरी मच विद निखिल जी।
1: और इसी बात पे इनका गाना भी प्ले कर देते हैं।
0: बहुत ही पुराना गाना है, जो जिंदगी देने वाले सुन
1: दिल्ली नादान,
0: तेरी दुनिया से दिल भर गया।
1: वाह, आज प्रमार जी भी गायकी कर रहे हैं।
0: देखिए गायकी की मुझे कुछ नहीं आती, लेकिन थोड़ी सी कोशिश
1: कोशिश
0: कर
1: है,
0: लेता हूँ।
1: कोशिश अच्छी है।
0: बाकी ये जो निकलेस जी ने गाना भेजा, वेरी नाइस सॉन्ग, इसे आप सुनाइए और मैं
1: जी
0: दिल से इस
1: बिल्कुल,
0: गाने को
1: और
0: सुन रहा
1: दिले
0: हूँ।
1: नादान मूवी का प्यारा सा गीत एंजॉय कीजिए
0: हाँ
1: आप
0: जी
1: सभी भी।
0: बिल्कुल।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला निकलेस जी आपकी पसंद का, जिंदगी देने वाले सुन दिले नादान मूवी का बेहतरीन गीत लेके आए हैं। प्रमाण जी क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, निकलेश जी, यू आर ए ग्रेट मैन। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को और सभी आपको विश्का जी, कि जो ये गाना गाया था ये तलत महमूद जी ने गाया था। और तलत महमूद जी के बारे में आप इतना नहीं जानते होंगे जितना मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उनके बारे में कुछ जान लीजिए।

विरोध एक रूढ़िवादी और मुस्लिम परिवार ने। अब भातखंडे संगीत संस्थान सीआर भट्ट के मार्गदर्शन में हिंदुस्तानी संगीत की मात्र 16 वर्ष की आयु में

0: है तपन कुमार के उपनाम से उनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था, तपन कुमार की तेरी
1: हाँ,
0: दिल में, ये गाना उन्हें बहुत अपार सफलता दिलवाई थी। जब उसके बाद उनका आगमन हुआ 1949 में बम्बई में, और हिंदी सिनेमा के लिए मशहूर संगीतकार जैसे नौशाद और अनिल विश्वास के साथ उन्होंने काम किया। उनके जो सदाबहार गाने थे वो मैं बताता हूँ। एक ये जहानारा फिल्म आई थी जी, उसमें गाना था तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ,
1: वाह,
0: ये गाना उनकी आवाज में बहुत ही
1: शब्द क्या है
0: मशहूर
1: गाने के,
0: हुआ।
1: बहुत ही प्यारे हैं।
0: हाँ, और एक और गाना था उनके गाए, और गाने बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने दिलीप कुमार, देवानंद राजपूत जैसे दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियों के लिए आवाज दी। और मैं जाना फिल्म के एक और गाने की तरफ ले चलूंगा आपको, वो था मैं ये शाम की तन्हाई या ऐसे में तेरा गम।

0: टैक्सी ड्राइवर का, जाए तो जाए कहाँ, ये गाना भी था। मेरी याद, भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म भूषण के से सम्मानित किया था। एक गाना उनका हुआ था, रात ने ऐसे क्या क्या ख्वाब, रात ने ऐसे ख्वाब दिखाए तुझे खुली तो टूटे सपने। और इनके इसके बाद में आपको आगे ले जाता हूँ, 9 मई 1998 को उनका मुंबई में निधन हो गया था, लेकिन उनके जीवन और उनके जादुई मुखौटे आवाज से इस सफर को गहराई से जानने के लिए आप और कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो वंशिका जी, आप आगे चलिए, आप क्या किस सुनने की फरमाइश आई और क्या फीडबैक है हमारे पास, सुनाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, फीडबैक देना से डालेंगे। और यहाँ पे निकलस जी का फीडबैक आ चुका है, वो भी सुन लेते हैं।
2: This song I was giving to my bottom of my heart to Mrs. Simran very much. I miss her. And to Mr. Parmal, Miss R.J. Vansekhar ji, and Sunil Kumar, Babita ji, and Bhagat ji. To everybody, thank you so very much. It's a very special song for Mrs. Simran. Oh, Mrs. Simran. I love her so much. Wonderful teacher, wonderful secretary.
1: थैंक यू सो मच फॉर
0: वाह
1: दिस
0: वाह वाह निकला
1: फीडबैक।
0: जी, ये शायद मिसेस
1: मिसेस
0: मिसेस
1: सिमरन जी कहीं
0: ये
1: जा रही हैं।
0: बॉम्बे बॉम्बे से रिलेटेड है शायद ये,
1: जी जी
0: उनके
1: बॉम्बे
0: बारे में।
1: वापस जा रही
0: हाँ
1: हैं वो।
0: शायद बॉम्बे जा रही होंगी, मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया था। और ये
1: आपने कल सुना होगा ना
0: निकलेस जी का जो कल प्रोग्राम आया था उसमें मैंने सुना इसके बारे में,
1: जी। आरिफ जी
0: तो
1: कहते
0: मुझे
1: हैं
0: अच्छा लगा ये।
1: जी निकलेस जी की फरमाइश बहुत ही प्यारी लगी है। रमकेश जी लिखते हैं, निकलेस जी आपकी पसंद लाजवाब है, बिल्कुल लाजवाब है। और यहाँ पे फीडबैक में कौन जुड़े हैं हमारे साथ, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं, फिल्म सत्यम सुंदरम का गाना यशोमती मैया से बोले नंदलाला क्यों गोरी मैं काला। इस गाने में थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा कंफर्म करे तो अच्छा लगेगा। मेरी फरमाइश का जो गाना था ओके जी, मैं कोशिश करती हूँ। तो जब तक तो प्रमाण जी आपके पास कोई जानकारी है तो बताइए।
0: मैं यही कहना चाहूंगा जी, हमारे विष्णु जी ने सत्यम सुंदरम मूवी के बारे में कुछ पूछना चाहा है, थोड़ी सी मैं इस पर भी रोशनी जरूर डालूंगा, लेकिन पहले आप किसी श्रोता की पसंद का गाना सुना दीजिए, बेचारे इंतजार कर रहे होंगे, उसके बाद मैं सत्यम सुंदरम की।
1: बिल्कुल, अगली पसंद सुनवाती हूँ आप सभी को गोपाल पाटीदार जी की, और गाना बहुत ही प्यारा है, जिया धड़क धड़क जाए। बिल्कुल राहत फतेह खान जी की आवाज में, जी जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। कलयुग मूवी का गाना एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया, जिया धड़क धड़क जाए, कलयुग मूवी का बेहतरीन गीत सुनवाया गोपाल जी आपने। बाबूलाल जी लिखते हैं वंशिका जी या प्रमाण जी हम भी जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बाबूलाल जी हम भी, जय श्री महाकाल। और निकलेस जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं।
1: थैंक यू सो वेरी मच फॉर माय चॉइस एंड माय रिक्वेस्ट। थैंक यू मिस्टर परमराव, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आज वंशिका जी, thank you so so very much from my bottom of my heart.
2: Yes,
1: such a nice girl. Thank you so very much.
2: Yes.

0: और ब्रिलियंट शो
1: लिसनर,
0: था,
1: और
0: लिसनर
1: यहाँ पे
0: है।
1: रमकेश जी लिखते हैं, लाजवाब, सुन के दिल को सुकून मिला इस गाने को। जी बिल्कुल, सुकून तो हमें भी मिला इस गाने को सुन के, बहुत ही प्यारी पसंद है ना प्रमाण जी। राहत
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: राहत फतेह अली खान जी की आवाज में सबसे बेहतरीन गाना।
0: तो अभी मुझे से पूछा था, किन्होंने पूछा था ये पद्म रेकॉर्ड पुरी जी की?
1: विष्णु चंद्र जी ने पूछा
0: अच्छा,
1: था,
0: विष्णु चंद्र जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा
1: बता
0: अभी
1: दिया था आपने।
0: फिर, निम्न सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में, पद्म पुरी जी के बारे में पूछा था, वो भी मैं बताना चाहूंगा। ये जो फिल्म आई थी 1978 में आई थी, सभी श्रोतों को भी ये बताना चाहूंगा, और इसमें बाल कलाकार यानी पद्मिनी कोल्हापुर ने मुख्य नायिका रूपा जिसे जिस रोल को निभाया था, जिन्हें जीनत अमान जी ने उसके बचपन की भूमिका यानी यंग रूपा का जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील किरदार निभाया था पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने। वो इस फिल्म में एक दुर्घटना का दृश्य दिखाया गया है। फिल्म की कहानी के अनुसार बचपन में एक दर्दनाक हादसे यानी चूल्हे के तेल से चेहरा जलने के हो जाता है। इस कठिन और दर्दनाक दुर्घटना वाले दृश्य को पद्मिनी कोल्हापुरी पर फिल्माया गया था, जिसने आगे जीवन और उनके पीड़ा की नींव रखी जिसे जीनत अमान जी ने निभाया था। भोलापन और मासूमियत में पद्मिनी ने अपने बेहतरीन अभिनय से बचपन की रूपा के भोलेपन, मासूमियत और सुंदरता को पर्दे पर जीवंत किया, जिससे दर्शक वयस्क रूप में की रूपा के संघर्ष के साथ जुड़ा महसूस कर सकें। उन्होंने एक गाना गाया था जो श्रीमती मैया से पूछे नंदलाला, ये गाना भी पद्मिनी कोल्हापुरी जी पर फिल्माया गया था, और इसे लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया था। और प्रसिद्ध गीत यशोमती मैया से बोले नंदलाला आज भी क्लासिक गानों में गिना जाता है, जिसमें उनकी बाल सुलभ नटखट अंदाव और सुंदरता को सराहा भी जाता है। और ये फिल्म बनी थी राज कपूर जी के निर्देशक में, और इसमें जो मेन रोल निभाया था शशि कपूर जी ने, और साथ में जीनत अमान जी ने, और जो उनके बचपन का रोल किया था वो किया था पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने। तो सभी श्रोताओं के साथ तो ये जानकारी मिल गई होगी वर्षा जी। देखिए आगे क्या फीडबैक है और कौन सा गाना सुनाइए आप, और किसका कोई प्रश्न आया हो तो मुझे बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा।
1: जी बिल्कुल, आपको बताते हैं हम, कोई प्रश्न आया है तो। और यहाँ फीडबैक है, रोहित सिंह जी लिखते हैं, गाना बहुत ही प्यारा लगा है और जानकारी भी बेहतरीन लग रही है। जी बिल्कुल, जानकारी तो आप सभी को बेहतरीन लगेगी ही, और क्योंकि प्रमाण जी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना कहीं ऐसी जानकारियां। और इसी बात पर अगला गाना सुनवाती हूँ, रमकेश जी की पसंद, जिंदगी एक नई जंग है। जी जी जाएंगे हम, तू अगर है संग, ये वाला गाना सुनना
0: बिल्कुल
1: चाहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, रमकेश जी की पसंद बेहद खुश और प्यारी और लाजवाब है, यानी कि थे इस फिल्म में जी, है ना, मेरी जंग फिल्म
1: जिंदगी एक नई जंग है। उससे पहले यहाँ पे फीडबैक है निखिलेश जी का, आज लिखते हैं, आज ही प्रमाण जी मुझे लगता है आप गूगल मास्टर है। प्रमाण जी
0: में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी दोस्तों की जरा नवाजी है, जो मैं कुछ ऐसा आप लोगों को सुना भी देता हूँ जिससे आप प्रश्न भी हो जाते हैं और आपको कुछ जानकारी का पता भी लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, मेरी बातें सुनने के।
1: जी बिल्कुल, और यहाँ पे जी बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल से मेरी जंग मूवी का गाना है, नितिन मुकेश जी, लता मंगेश।

अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना?

आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम मेरे पास नहीं हो? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूँ।
0: तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं?
2: ये तो ऐसी होती है।
1: कैसे चला जाऊं? ये तो बात,
2: ये तो जिंदगी बदलती रहती है। जिंदगी बिल्कुल ऐसी है जैसे पहाड़ों की तरह, कहीं भी ऊंचाई है तो कभी नीचाई है।
3: वर्षा जी, मैं ये कहना चाहूंगी अच्छी फिल्म थी ये,
2: और नेटवर्क भी हमारे जिंदगी की तरह ही,
1: जहाँ पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहाँ पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन है। ये तो वो जगह है जहाँ पर
2: बहुत सारी
1: पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहाँ चले जाऊँ, कैसे चला जाऊँ?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूँ जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पे यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राज गायक, इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहाँ से।
2: तो खुशबू जी आप कैसी हैं, प्लीज बताइएगा। मैं तो बिल्कुल अच्छी
3: हूँ। सबसे पहले तो मैं खुशबू जी का स्वागत अदा करना चाहूंगा।
2: वेलकम बैक इंटरनेट भागने के बाद।
3: वेलकम वेलकम वेलकम, इंटरनेट बीच बीच में जा रहा है, मैं अच्छी तरह से स्वागत भी करवा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा बहुत ही खूबसूरत स्वागत करता हूँ मैं आपका। तो अभी वैसे जो गाना चला था ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा था। इस फिल्म के बारे में मैं थोड़ा बहुत रोशनी जरूर डालना चाहूंगा श्रोताओं के दिमाग में। ये फिल्म आई थी 11 अक्टूबर 1985 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मेरी जंग। ये बॉलीवुड के कोर्ट रूम ड्रामा एक्शन फिल्म है जिसके सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था और NNCP जी ने इसे बनाया था। इसमें अनिल कपूर जी, मीनाक्षी शेषाद्री जी नूतन और अमरीश पुरी मुख्य भूमिका में थे। कहानियों में शुरू होती है एक बेटे अरुण की कहानी होती है जो एक भ्रष्ट और चालाक वकील ठकराल द्वारा अपने पिता पर झूठा आरोप लगाकर अपमानित किए जाने के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर किए जाने के लिए अदालत में अपना बदला लेता है। अनिल कपूर यानी अरुण वर्मा, अमरीश पुरी वकील ठकराल और नूतन आरती की माँ और जावेद जाफरी जिन्होंने इस फिल्म में अपने अभिनय से की शुरुआत की थी, जावेद जाफरी जी ने। और ये जावेद जाफरी जी के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा, ये हमारे जो अभिनेता होते थे ना दिलीप जी,
2: हाँ जी हाँ जी, जो एक्शन में भी थे बहुत ज्यादा,
3: नहीं कॉमेडी एक्टिंग क्या करते थे दिलीप जी, ये शोले फिल्म में भी थे, है सुरमा भोपाली का रोल उन्होंने अभिनय किया था। और इस फिल्म में क्या था, इस फिल्म की जो कहानी थी वो जावेद अख्तर जी ने लिखी थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। लोकप्रिय गाना जो है ना जिंदगी ये हरकत है एक नई जंग है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय भी हुआ था उसका जी। ये मैं थोड़ी सी जानकारी दी, अपनी शुरू
2: था, बहुत ही प्यारा गाना लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है।
3: अब आगे आप देखिए कौन आए हमारे शुरू पर, क्या क्या फीडबैक आए और क्या क्या फरमाइश आई बताइएगा जरूर।
2: और यहाँ पे निकले ऐसे लिखते हैं आज वंशिका जी, मुझे लग रहा है सर्वर जो आपका इंटरनेट है कहीं ना कहीं जा रहा है, बिल्कुल मेरे ख्याल से फुटबॉल मैच खेलने जा रहा हूँ।
3: हालांकि मैंने और वंशिका जी ने टांग और हाथों से उसे पकड़ी बिठा रखा है,
2: लुका छुपी खेले जा रहा है
3: और भाग जाता है वो
2: जी, बिल्कुल
3: जोर से पकड़ी इंटरनेट
2: मैं क्या करूँ, अब भाग रहा है तो भाग रहा है। और इसी बात पर अगला गाना मैं सुनाती हूँ, बाबूलाल अंजना जी की पसंद, लिखते हैं गाना सुना है नौकर बीवी का, गाने के बोल है जमाना तो है नौकर बीवी का। सच्ची में है प्रभात जी, आपको क्या लगता
3: है? ये मजाक या जोक बनके रहेगी,
2: तो चलिए जो भी है सुनते हैं प्यारा सा गाना।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला। जमाना तो है नौकर बीवी का, कौन सी बीवी का नौकर है, मुझे तो यहाँ पे देख नहीं रहा। परमार जी आपको बताएगा, बताइए
1: देखिए देखिए,
0: मुझे।
1: मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानता हूँ, जो मैं अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा और साझा कर करके उनको इस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये जो फिल्म थी ये आई थी जी, फिल्म 22 जुलाई 1983 को रिलीज हुई थी फिल्म, और इसका जो निर्देशक थे, जो इसके बनाने वाले थे, प्रोड्यूस डायरेक्टर, वो थे राजकुमार कोहली। इस फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं थी, धर्मेंद्र, अनीता राज और रीना राय ने की थी, और इसमें कादर खान जी भी हुआ करते थे। कहानी होती है फिल्म में धर्मेंद्र यानी दीपक और अनीता राज यानी जिसका नाम था ज्योति के नकली पति बनने का नाटक करने की, अमीर और घमंडी स्वभाव की ज्योति यानी अपना अनीता राज जी अपने पति को घर में एक नौकर की तरह रखती है, जिसके बाद कहानी में कई मजेदार और नाटकीय मोड़ आते हैं और हंसी भरे सीन भी आते हैं जिससे लोग खिलखिलाकर हंसते भी हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये पाकिस्तानी फिल्म नौकर वोटीदा, यानी पाकिस्तान में फिल्म आई थी जी वो नौकर वोटीदा,
0: वोटी मतलब बीवी होता है ना पंजाबी में।
1: 1974 में ये रिलीज हुई थी पाकिस्तान में, और इसका ये रिमेक थी ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी, और इंडिया में ये इसका गाना जमाना तो है नौकर बीवी का बहुत ही लोकप्रिय भी हुआ था। तो ये फिल्म के बारे में मैंने आपको कुछ बताया वर्षिका जी, तो आगे देखिए किसकी फरमाइश और क्या पूछ रहे हैं श्रोता हमसे।
0: जी बिल्कुल, देखते हैं। और यहाँ पे वैसे लिखते हैं आरिफ सिंधी जी। परमार जी ठीक है आप?
1: तो खांसी आ गई।
0: आरिफ सिंधी जी लिखते हैं, परमार सर जी, वंशिका जी, प्रोग्राम लाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि इस प्रोग्राम में भूले भीषे गीत सुनने को मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और खुशबू कुमार जी लिखती हैं, आज हम कौन सा गीत सुन सकते हैं? आपको आज कोई सा भी गाना सुन सकते हैं, चाहे तो आप ओल्ड इज गोल्ड भेजें, चाहे तो आप नया भेजें, आज के शो में कोई लिमिट नहीं है। और क्या लिखती हैं, अच्छा जी लिखती हैं दीदी, आज प्रमाण सर जी हमें अपनी बेटी मानते हैं, तो बस उनके अपनेपन मुझे अपने आपके कार्यक्रम से जुड़ने पे मजबूर कर दिया। हम जब भी अपने पिताजी को याद करते तो आज प्रमाण सर जी की याद आ जाती है हमें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू बेटा। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा मेरे बारे में और ऐसा कुछ अपने दिल में हमारे लिए भावना भी रखती है, तो मैं उसकी कदर भी करता हूँ और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप किसी भी तरह का कोई भी गाना, आप पुराना नया कॉमेडी कोई भी गाना आप भेज सकते हैं, जो हम अपने प्रोग्राम में आपका चलाएंगे खुशबू बेटा, तो भेजिए अपनी फरमाइश।
0: जी बिल्कुल। और निकिलेश लिखते हैं, आज वंशिका जी सरवर जी बिल्कुल, हमें क्या कहूँ। और बाबूलाल जी लिखते हैं, वंशिका दीदी शुक्रिया आपने हमारे गाने को प्ले किया। और रमकेश लिखते हैं, लाजवाब गाना सुनने को मिला, अच्छा लगा है, मैं अभी लेह लद्दाख में से सुन रहा हूँ, घर की याद आ गई इस गाने को सुन के। अच्छा जी,
1: वाह जी
0: लेह
1: वाह
0: लद्दाख में बैठे हैं, मतलब ठंड
1: रामकेश
0: इतनी
1: जी, बाकी वहाँ जहाँ बैठे हुए वहाँ तो जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है कई बार, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ बैठ के भी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है मेरे दिल में आपके बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया रामकेश।
0: और खुशबू कुमारी जी एक और चीज लिख के भेजती हैं, लिखती हैं, शब्दों में मिठास विचारों में उजियारा है, शब्दों में मिठास विचारों में उजियारा है, आप दोनों के व्यक्तित्व सबसे न्यारा है, यूं ही मुस्कानों की सौगात बांटते रहिए, आपका स्नेह और आशीर्वाद ही हमारा सहारा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी, और आपने मुझे अपने जो इज्जत दी और जो इज्जत बख्शी, उसका मैं तेरे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं कि आप मेरे प्रोग्राम में आज जुड़ी, तो
0: और इतनी
1: आगे भी
0: प्यारी
1: जुड़ते
0: प्यारी बातें
1: रहेंगे,
0: कह
1: और
0: रही
1: इतनी
0: हैं।
1: प्यारी प्यारी और खूबसूरत बातें आप कर रही हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अपनी बातों और अपने फीडबैक की तरह को खूबसूरत सा प्यारा सा गाना भी अपनी पसंद का भेजिए, उसे भी हम सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल। और यहाँ पे इसी बात पर अगला गाना सुनवाऊंगी मैं, सर्वजीत सेठी जी की पसंद। तो लिखते हैं, गाना सुना है वंशिका जी, मूवी का, भाभी मूवी का गाना है, छुपा कर मेरी आंखों को पूछे कौन है, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे, सभी श्रोताओं को डेडिकेट करते
1: बहुत
0: हैं।
1: ही प्यारा और बड़ा पुराना बहुत हिट गाना है वंशिका जी, ये जो सरजीत जी देख रहे हैं।
0: सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है सर्वजीत सेठी जी, आपके पसंद लाजवाब लाजवाब लाजवाब बिल्कुल। और निकलेस जी का फीडबैक है वो सुन लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं आगे।
1: Thanks, Kanji. Mr. Parma, he have golden voice and he know each and everything. Feeling so nice. And I like Mr. Ajay Aman. He's master voice. He's a very good singer. He's a very different Ajay. Mr.
0: Aman.
1: Aman.
0: Didi.
1: He's always have different and is a very good singer. You see?
0: His style is different and unique.
1: He know about knowledge about Bollywood. And Ajay Vansika ji, you are the great. Thank you so very much.
0: थैंक यू सो मच आरजे, मतलब थैंक यू सो मच निकलस जी कि आपने मेरी, अमन जी की और प्रमाण जी की सभी की तारीफ करी और आपने कहा कि हमारा स्टाइल अच्छा लगता है। हम तो यही चाहते हैं ना, हम सभी आरजे।
2: व्हाट अ नाइस फीडबैक वंशिका जी। निकलस जी इज अ वेरी वंडरफुल मैन एंड
0: फीडबैक इज ऑल्सो वंडरफुल।
2: वॉइस इज वेरी नाइस एंड
0: बहुत ही प्यारे गाने लगाते हैं।
2: फीडबैक आर वेरी
0: इनक्रेडिबल। और यहाँ पे आरिफ सिंधी जी लिखते हैं शानदार गाना सुनने को मिला सर्वजीत सेठी जी का। और अगले गाने की तरफ चलेंगे। आज अमीना खान जी नहीं दिखाई दे रही मुझे, कहाँ है अमीना जी आप? और अमीना जी की याद में यहाँ पे गाना मैं सुनाऊंगी जो कि अजय भगत जी की पसंद है, आशाओं के सावन में उमंगों की बहार में। ये वाला गाना सुनना चाहेंगे, सभी श्रोताओं को डेडिकेट करते हैं युवराज भगत जी और मयंक भगत जी को। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली, आशाओं के सावन में हम खो जाएं। अजय भगत जी बिल्कुल बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली आप।
1: हाँ जी, अजय भगत निरंकारी जी, आपके इस गाने से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। बहुत ही अच्छा गाना है। ये फिल्म आशा से था, और इस फिल्म के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। अजय भगत निरंकारी जी, तो आशा नाम से दो फिल्में बनी हुई थी जी। एक तो
0: अच्छा
1: बनी
0: जी,
1: थी 1980 में, आई थी एक फिल्म जिसमें थे जितेंद्र, रीना राय और रामेश्वरी।
0: अच्छा जी,
1: और इससे पहले भी एक फिल्म आई थी 1957 के अंदर, उसका नाम भी आशा ही था। उसमें किशोर कुमार जी और वैजयंती वैजयंती माला जी, वैजयंती माला जी तो आप समझ गए होंगे, जो सूरज फिल्म में थी और
0: जी
1: साथी
0: जी
1: फिल्म
0: बिल्कुल।
1: में थी। तो इसमें मुख्य मुख्य भूमिका में थे 1957 वाली आशा में। और आशा जो 1980 में फिल्म आई थी, इसे जय ओम प्रकाश जी ने निर्देशित किया था। उसके पूरे जो कलाकार थे उनके बारे में बताऊंगा। जितेंद्र ने दीपक जी की भूमिका निभाई थी, रीना राय जी ने आशा की, और रामेश्वर जी ने माला की भूमिका निभाई थी। और इस फिल्म में गीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, और इस गाने फिल्म के गाने सारे ही लोकप्रिय रहे थे। इस फिल्म के गाने के सीक्वेंस में निर्देशक जे एम प्रकाश के 6 वर्षीय पोते ऋतिक रोशन ने अन्यास ही डांस किया था। यानी ऋतिक रोशन जी जो इसके जे एम प्रकाश जी के पोते थे,
0: जी जी बिल्कुल,
1: उन्होंने भी फिल्म में
0: राजेश और राकेश रोशन जी मतलब उनके बेटे हैं ना।
1: तो ये क्या था इस फिल्म में, और इस डांस को भी इस फिल्म में शामिल किया गया था। ये और 1957 में जो फिल्म आशा आई थी, वो थी उसको जो डायरेक्ट किया था वो ए वी रमन ने किया था। उसके जो मुख्य कलाकार होते थे वो किशोर कुमार, वैजयंती माला, प्राण थे जी। यह एक सफल रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म थी, जिसे गेवा कलर और टेक्निकल में भी फिल्माया गया था। तो मैंने आपको वंशिका जी, आपको और सभी श्रोता को और साथ में अजय भगत निरंकार जी को भी ये बताया कि आशा राम की दो फिल्में बनी थी और उनकी ये कहानियां थी और उनकी कौन कौन डायरेक्ट थी। तो आप भी
0: बिल्कुल
1: दोस्तों कुछ भी मुझसे पूछना चाहें और किसी बारे में पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।
0: बिल्कुल। और यहाँ पे निकले से लिखते हैं आरजी वंशिका जी, आरजी प्रमाण जी, गाना बहुत ही प्यारा लगा है जी बिल्कुल। और खुशबू कुमार जी लिखती हैं, आवाज में अपनापन, शब्दों में सम्मान, आवाज में अपनापन, शब्दों में सम्मान, आप दोनों से मिलता है प्रेरणा का वरदान, ईश्वर आपको सदा स्वस्थ, सफल और प्रसन्न रखे, यही है दिल से निकली हमारी सच्ची शुभकामना। बहुत ही प्यारा
1: बहुत
0: लिखा
1: बहुत
0: है
1: शुक्रिया, बहुत अच्छा लिखती है बेटा, क्या नाम है इनका,
0: खुशबू
1: खुशबू
0: जी।
1: जी। और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और जो आपकी शायरी है दिल पर छा जाती है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बातें सुनकर।
0: जी, और रामकेश जी लिखते, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना, बहुत अच्छा, सुनकर सुन के दिल को सुकून मिल गया है जी
1: रामका
0: बिल्कुल।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, गाना था ही इतना जो आपको आना ही था।
0: और अगले गाने की तरफ जल्दी से नजर डालेंगे तो ये है गजानन सालूकार जी की पसंद, मैं वही दर्पण वही ना जाने ये क्यों हो गया, ये वाला गाना सुनना चाहेंगे आरती मुखर्जी जी की आवाज में। आदरणीय आरजी वंशिका जी, परमास सर जी, हमारे ग्रुप की सभी श्रोताओं को शामिल है, अमन जी उनकी सुंदरता की मूरत जी, और सभी साथियों को भी। ओके जी, थैंक यू सो मच,
1: और
0: सुनवा दिया।
1: गजानन सालोगार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और ऐसे फीडबैक देने के लिए। और साथ में ये भी बताइएगा, जिन बेटी का आपकी बेटी थी जिनका क्या नाम था, वैष्णवी
0: वैष्णवी जी मिठास
1: जी का जो जन्मदिन था, वो कैसा मनाया आपने और कैसा रहा, और वैष्णवी बेटा क्या करती है, ये भी थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें और श्रोताओं को।
0: जी, और सुनवा देते हैं पसंद को, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारी पसंद सुनने को मिली है। मैं वही दर्पण वही वही चीज सुनने को मिला, बहुत ही प्यारी पसंद है। और चलते हैं फीडबैक्स की तरफ, क्या कहते हैं सभी श्रोतागण, उनको उनकी फीडबैक्स भी पढ़ लेते हैं। लिखते हैं रोहित सिंह जी, गाना बहुत ही प्यारा लगा। जी बिल्कुल, गाना तो प्यारा लगेगा ही, गाने इतने प्यारे प्यारे भेजे जो हैं आप सभी ने। और रमकेश जी लिखते हैं, मेरे ग्रुप के दोस्तों की गजानन जी की पसंद को सुनवाने के लिए आपको दिल से धन्यवाद, और इनकी बिटिया को हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे जन्मदिन उनका कल था और हम लेट विश कर रहे हैं। मैं तो कर दिया था ना, परमार जी नहीं कर पाए थे इसलिए आज विशेष दे रहे हैं।
1: बिल्कुल, मैं इसीलिए उनको विश किया।

बात यही बताऊंगा, दुनिया भर में दर्शकों और समीक्षकों द्वारा सबसे अच्छी जानी मानी 10 फिल्म सर्विस

प्यारी फरमाइश लिख रही हैं। उससे पहले यहाँ रोहित गाने बहुत ही प्यारे हैं जी, बिल्कुल गानों की क्या बात कहें, है ना फरमान जी। और बॉर्डर मूवी का ही गाना है तो चलो, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं अगर मेरा हुआ तो मैं जाते जाते वो गाना जरूर सुना के जाऊंगी आपसे। रूपचंद गोयल जी, मतलब रूपचंद गोयल जी नहीं, रूप कुमार राठौर जी की, रूपचंद जी तो हमारे मिस्टर का नाम है। तो चलिए सुनाती हूँ आप सभी को अभी खुशबू जी की पसंद संदेश से आती है, एंजॉय कीजिए। बहुत ही प्यारा गाना और बहुत ही लंबा गाना है, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारी फरमाइश सुनवाई यहाँ पे खुशबू जी आपने। संदेश से आते हैं, बिल्कुल संदेश से तो आते ही हैं, यादें भी आती हैं, और बहुत ही प्यारा गाना लेके आई हैं आप। लिखती हैं जी, बिल्कुल। और एक और बार बताना चाहूंगी खुशबू जी, आपने बिल्कुल सटीक गाना भेजा है, क्योंकि आज ऐसी ही रिलेटेड एक चीज भी है जो कि आप सभी को समझ आएगी क्या चीज है आज। ओके जी। और ये गाना बहुत ही प्यारा भेजा खुशबू जी आपने, और क्या है आज वो भी मैं आपको बताऊंगी। और परमार सर जी, उससे पहले कुछ कहना चाहते थे आप, बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा और लाजवाब गाना बेटा भेजा खुशबू जी ने, जो हमारी बेटी जैसी है। और वर्षिका जी, आपने पूछा था दिल वाले दुल्हनिया के बारे में,
0: जी बिल्कुल, उससे पहले फीडबैक है वो पढ़ लेते हैं। और रोहित सिंह जी लिखते हैं, गाना बहुत ही प्यारा लगा, देशभक्ति के ऊपर गाने सुनने को मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और आज से आप सभी के लिए, आज का पता है आप सभी को, आज गाना खुशबू जी आपने जो भेजा संदेश से आते हैं, जो कि आज वो हमारे जो दो सरहद पे हमारे सैनिक लोग हैं उनको समर्पित गाना है, बॉर्डर मूवी से। आप सभी ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, कितनी प्यारी मूवी है, हमारे सभी सैनिकों को समर्पित मूवी है, और गाना भी समर्पित है। और आज है कारगिल विजय दिवस, जो कि जुलाई 26 को हर साल मनाया जाता है,
1: बिल्कुल
0: कारगिल वॉर
1: बिल्कुल।
0: के
1: वर्षिका जी
0: मेमोरियल में।
1: बहुत ही खूबसूरत प्यारी जानकारी दे रहे हैं आप,
0: जी
1: दीजिए दीजिए श्रोताओं को।
0: कारगिल वॉर की मेमोरी में आज लद्दाख में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, पूरे देश में जब मनाया जाता है, जो कि 1999 में कारगिल वार हुआ था उसके लिए आज उसकी 27वीं एनिवर्सरी है। और लोकेशन इसकी बताई जाती है द्रास वार मेमोरियल लद्दाख इंडिया में। और ये इसलिए आज कारगिल के वार के जो हीरोज हैं, यानी कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें जिन सैनिकों ने अपनी शहीदी की थी, अपनी अपनी जानों को दे के हमारी जानों को बचाया था, हम ताकि हम खुश रह पाए अपने घरों में, हमारे लिए इतना कुछ किया था, इन सभी वीर जवानों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। मेरी तरफ से आज, प्रमा जी की तरफ से, आज यमन जी की तरफ से, हमारी रेडियो ऑस्ट्रा की पूरी टीम की तरफ से हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और आज इस दिवस पे एक गाना भेजा खुशबू जी आपने, आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी कि आपके इस गाने के चक्कर में मुझे याद आया कि आज क्या चीज है। थैंक यू सो मच। और लिखती हैं दीदी, आज कारगिल जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात कही। और रमकेश लिखते हैं, मैं भी आर्मी में मैं आया हूँ। अच्छा जी, आप भी वहीं पे हैं, अच्छा जी। और निकलेस जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं। और गाना जो सुनवाया खुशबू जी, आज आपको हो सकता तो आज आपको सॉन्ग विनर बनाते हैं ना परमार जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा गाना रहा खुशबू जी आपका, और आपको सॉन्ग विनर बनाएंगे और आपसे वर्षिका जी बातें भी करेंगी।
0: जी नहीं, वैसे अगर आप चाहें तो बात करेंगे, आप लिख दीजिएगा। अगर चाहती है कि आपको बस गाना प्ले किया जाए तो आप गाना गाना लिख के मुझे भेज दीजिए।
1: अगर आप बात करने के बारे में लिखेंगी तो जरूर बताएंगे आपको।
0: जी बिल्कुल, आप अगर चाहती हैं कि आपसे बात की जाए तो आप लिखिएगा, नहीं तो नो कॉल है तो नो कॉल लिख के आप मुझे अपनी पसंद का गाना मुझे भेज दीजिएगा। और निकला जी का फीडबैक,
2: बड़ी बात खुशबू कुमारी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओ थैंक यू आप जे वंशिका, मिस्टर आर जे परमल जी, you are people are great, all the good song, and I'm so worried about you have only half an hour more
0: Achha.
2: And I feel so sorry for you people,
0: no
2: take
0: problem,
2: some
0: we are
2: more time please।
0: अच्छा जी, कोशिश करेंगे, पर यह है कि एक्चुअली ऐसा है ना निकलेस जी, हम आपके साथ चाहे तो 24 घंटे रहे फिर भी समय कम लगेगा, ये बात है हमारे लिसनर्स के साथ। और खुशबू कुमार जी लिखते हैं, आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वीर शहीदों को उनकी शहादत पे कोटी कोटी नमन। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, जो वीर जवानों ने हमारे लिए किया है, हम अपने घरों में बैठे रहे हैं, अपनी आराम से जिंदगी को बिताया है, और उन्होंने अपनी जानों को वहां सरहदों पे लुटा के हमारी जिंदगियों को बचाया है। और सवजीत सेठी जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं।
3: धन्यवाद वंशिका मैम और परमार सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आशाओं के सावन में मंगों की बहार में, तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में, आशाओं के सावन में। बहुत ही लाजवाब गीत और कार्यक्रम भी बहुत ही शानदार चल रहा है, तो सुनते हैं रेडियो ओकाना जो बराबर सबको दीवाना। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत सेठी जी, इतना खूबसूरत फीडबैक आपने दिया, और जो फीडबैक निकलेस जी ने दिया वो तो था ही लाजवाब, और साथ में खुशबू बिटिया ने जो गाना सुनाया वो भी देश पे समर्पित था, और कारगिल से के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया, वो भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे और आगे बताओ वंशिका जी, आपने कुछ दिल वाले दुल्हनिया के बारे में पूछा था, उसके बारे में मैं थोड़ा सी
0: जी जरूर
1: नॉलेज
0: बताइए
1: देना चाहूंगा।
0: बताइए बताइए,
1: यानी
0: नहीं क्या कुछ
1: 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी ये फिल्म जी, दिल वाले यानी DDLG, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी जी, और इसको निर्देशन इसका निर्देशन या डायरेक्शन दी थी आदित्य चोपड़ा जी ने किया था। और आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में, राज और सिमरन यूरोप की यात्रा के दौरान मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। सिमरन के पिता अमरीश पुरी उनकी शादी पंजाब के अच्छे लड़के से तय कर चुके होते हैं। राज भारत आकर परिवार का दिल जीत कर सिमरन को पढ़ाना चाहता है। और इसके बारे में एक बात और बताऊं, उन्होंने थिएटर में रिकॉर्ड भी बनाया था इस फिल्म में। ये मुंबई का एक थिएटर था मराठा मंदिर।
0: अच्छा,
1: तो मराठा मंदिर पे ये 30 साल तक चली थी जी फिल्म, और लगातार चलती रही थी। भारतीय फिल्म का इतिहास इसने रचा था, ये भी एक इतिहास है इस फिल्म के, ये भी एक रिकॉर्ड है इस फिल्म के लिए। फिल्म के गाने जैसे देखा तुझे देखा तो ये जाना सनम आज भी लोगों की जुबान पर है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में पारिवारिक मूल्यों और प्रेम कहानी का एक नई परिभाषा गढ़ी थी। अगर आप इस फिल्म के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। वंशिका जी देखिए जब किसकी फरमाइश है
0: जी। बिल्कुल, चलते हैं फरमाइशों की तरफ। उससे पहले निकलेश जी का फीडबैक है, वो सुन लेते हैं क्या कहते हैं। कारगिल
2: वॉर दिवस। Thank you so very much. Happy Soldiers Day. Oh, I don't know exactly. You please tell me what is going on today about soldier.
0: Okay, I will tell you. Today is Kargil War Day. यानी कारगिल वॉर हुआ था हमारा 1999 में, उसकी याद में आज दिवस मनाया जाता है। और अजय भगत जी लिखते हैं जी बिल्कुल, कहाँ थे आप अजय जी। और इसी बात पे अगला गाना मैं सुनवाती हूँ, विष्णु चंद्र जी की पसंद। लिखते हैं गाना सुना है कि गाने के बोल हैं और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी तुम ही मेरे साथ रहना। ये वाला गाना सुनना चाहेंगे, सभी श्रोताओं को डेडिकेट करते हैं। सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: जीवन साथी साथ में रहना, साथ छोड़ के बिल्कुल ना जाना, बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया यहाँ पे विष्णु चंद्र जी ने। आरिफ जी कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया गाना सुनवाने के लिए। और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी आज भी मराठी मंदिर में एक आज आज भी एक शो आज भी चलता है। अच्छा जी, रोजाना चलता है। खुशबू कुमार जी लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने को मिला है, थैंक यू सो मच जी। और यहाँ पे निकला लिखते हैं आंशवंशिका जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना, और इंडियन आर्मी के लिए बहुत हमारी तरफ से सलाम। रमकेश जी कहते हैं कि जितना ये गाना इतना अच्छा, इतना सुनो उतना कम लगता है। ये सॉन्ग मेरी बीवी के लिए डेडिकेटेड है जो प्रोग्राम फरीदाबाद से सुन रही है। अच्छा जी, फरीदाबाद से सुन रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। कुमार जी आप क्या जानकारी लेके आए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मैं भी आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये एक फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसकी फिल्म का गाना मैं अपनी पसंद का भी सुनवाना चाहूंगा। इस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म हुई थी रिलीज 1959 में, 1959 में, और इसे विजय भट्ट ने डायरेक्ट किया था। और एक प्रसिद्ध हिंदी संगीतमय फिल्म थी ये, जो मुख्य रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत और एक शहनाई वादक की प्रेम कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार हुआ करते थे और अमिता मुख्य भूमिका में थी। इसका संगीत वसंत देसाई जी ने तैयार किया था। इस फिल्म जय फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार के कैरियर की पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता हिंदी फिल्म मानी जाती है, जिसके बाद उन्हें जुबली स्टार कहा जाने लगा था। एक जुबली स्टार बन गए थे राजेंद्र कुमार जी इस फिल्म से। कहानी एक अनाथ संगीतकार किशन राजेंद्र कुमार के इर्द गिर्द घूमती है और शहनाई वादक से गहरा प्रेम करते हैं वो। फिल्म में प्यार और कर्तव्य की और कला के बीच के संघर्ष को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपना संगीत सहयोग दिया था। फिल्म के सभी शहनाई के टुकड़े खुद बिस्मिल्लाह खान साहब ने बनाए थे, जिससे फिल्म एक अलग ही नहीं अलग ही सजीवता आ गई थी। इस गाने और जैसे जीवन में पिया तेरा साथ रहे और तेरे सुर मेरे गीत दिल का खिलौना टूट गया, जिसमें लता सिंह मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी ने गाया था, और यही गाना मैं आपको अपनी पसंद का आप सुनवाना चाहता हूँ। तो वंशिका जी सुना दीजिए मेरी पसंद का एक गाना आप।
0: सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
2: दिल का घर खिलौना कोई टूट गया,
0: बहुत ही प्यारी पसंद, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कुछ लोग दिल को खिलौना समझ लेते हैं और तोड़ के चले जाते हैं, समझते नहीं है कि किसी का दिल कितना दुखेगा। और गाना परमार जी आपने सुनवाया, तो आप बताइए क्या सोच के समझाया सुनवाया था? अच्छा लगता है आपको ये?
1: नहीं, अच्छे बात अच्छे लगने की नहीं है अनुष्का जी। एक जो फिल्म थी, एक क्लासिक फिल्म थी और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी फिल्म थी। उसके गाने, फिल्म के गाने बहुत ही ज्यादा हिट और खूबसूरत थे, तो इसलिए मैंने सुनाया था। गाना मुझे अच्छा लगता है और बहुत बार सुनाया मैंने, इसलिए सुनाया। और सभी श्रोता भी इसे पसंद करें ते होंगे, शायद उनके फीडबैक में आया भी हो या
0: बिल्कुल।
1: नहीं।
0: और यहाँ पे आरिस सिंधी जी लिखते हैं, प्रमाण सर जी आपकी पसंद बहुत ही लाजवाब। खुशबू कुमार जी कहती हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा और पुराना गाना सुनवाने के लिए अच्छा लगा, पहली बार सुन रहे हैं इस गाने को और अच्छा लग रहा है। और प्रमाण सर जी, आपकी वजह से पुराने दौर की फिल्मों के बारे में दुर्लभ जानकारी प्राप्त हो रही है, धन्यवाद आपको।
1: बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दोस्त दूसरे, क्या नाम था उनका?
0: इनका नाम था आरिफ जी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं, मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ सुनने के लिए धन्यवाद। और आरजे प्रमार जी, राधे राधे नमस्कार, आशा करता हूँ बस आपको भी मेरा गाना पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल आया जी, आपका गाना जरूर पसंद आया जी। क्या नाम उनका?
0: विष्णु जी का गाना जो उससे
1: विष्णु
0: पहले
1: जी,
0: बजाया था,
1: विष्णु जी का गाना
0: जो
1: बिल्कुल
0: जीना
1: सुपर हिट गया,
0: जी जीवन
1: सुपर
0: साथी वाला
1: गाना,
0: जो गाना
1: बिल्कुल
0: सुनवाया था।
1: सुपर हिट गाना था जी।
0: और इसी बात पे, जैसे कि बताया था, आज की विजेता बनी है खुशबू कुमारी जी, नई सॉन्ग रिवेना बनी है। तो खुशबू जी, आपकी पसंद का गाना इन्होंने भेजा है। इन्होंने लिखती है, गाना सुनना है सीमाएं बुलाएं तुझे, LOC कारगिल की मूवी का गाना है, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, खुशबू कुमारी जी की पसंद, यानी कि खुशबू जी आपने दिल लूटने का सोच रखा है ना, और सैनिकों के ऊपर इतने प्यारे प्यारे गाने भेजे हैं आप आज कारगिल दिवस में, उसके लिए शुक्रिया आपको। और निकलेस जी का फीडबैक है, वो भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: आगे वंशिका जी
0: हाँ
1: एंड
0: जी
1: आगे फरमाल जी, यू नो मिस्टर सिमरन सेड इफ यू गोइंग टू प्ले वन सॉन्ग फॉर हर एंड दिस belongs to Indian soldier. She said, what can I say? What can you tell me? How can you tell me? She said, Mera vatan ka logo, jara aankha bara lo pani.
0: Anji, your Hindi is so cute, na?
1: I don't know more. I don't know. That's all. That's all, Arte. Thank you so very much. Thank you so very much.
0: थैंक यू सो मच।
2: व्हाट ए नाइस फरमाइश निकलस जी, एंड निकलस इज वेरी नाइस मैन, नाइस फेलो, आई लाइक हिम वेरी मच। वर्षिका जी आई लाइक हिम वेरी मच, निकलस इज ए ग्रेट मैन
0: जी। खुशबू कुमारी जी कहती है, दीदी आपने हमारे गाने को सुनवाया, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और अगला गाना मैं सुनवाने वाली हूँ, जैसे कि निकलस जी ने कहा, उससे पहले प्रमाण जी कुछ कहना चाहेंगे।
2: देखिए खुशबू जी, आपने जो गाना भेजा बहुत ही खूबसूरत लजीज गाना था, मुझे बहुत पसंद आया, और आपके ने जो कारगिल के बारे में बताया वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी तरह मैं भी अभी सभी श्रोताओं से अपनी भी कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। ये बातें हैं, जो हमारा एक बार युद्ध हुआ था 1964 के अंदर, 1964 के अंदर चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था जी, उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसी से रिलेटेड एक फिल्म बनी थी, चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म थी, ये फिल्म का नाम था हकीकत। और इस फिल्म के जो कलाकार थे वो थे धर्मेंद्र जी थे, बलराज सहनी जी थे। धर्मेंद्र जी ने कैप्टन कर्नल बहादुर सिंह का रोल निभाया था, बलराज सहनी जी ने मेजर रंजीत सिंह का, प्रिया राजवंश जी थी जिन्हें अगमो का रोल निभाया, और जयंत ब्रिगेडियर सिंह की भूमिका में थे। ये फिल्म 1962 के इंडिया और चाइना वार से संबंधित है, और लद्दाख की विषम परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों के अभेद्य साहस को दर्शाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी विशाल शत्रु का सामना करती है। यह केवल युद्ध का दस्तावेज नहीं है, बल्कि रण क्षेत्र में तैनात आम सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन, उनके सपनों और उनके परिवारों की भावनाओं का एक संवेदनशील चित्रण है। ये फिल्म अपने टाइम की हिट मूवी थी, और ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में भी थी, निकलन में नहीं आई थी वंशिका जी, ब्लैक एंड व्हाइट में थी। और इसी फिल्म का जब हम जाएंगे, जब प्रोग्राम खत्म करेंगे, तो उससे जाते मिलने रहे गाना भी प्ले कीजिए। अभी निकलस जी की फरमाइश का जो गाना है वो प्ले कर दीजिए, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ठीक है, लता मंगेशकर जी आवाज में ये गाना सुना दीजिए।
0: रामकेश जी लिखते हैं, निकलस जी का फीडबैक दिल को छू गया, इनको दिल से सलाम, जय हिंद जय भारत, हैप्पी कारगिल दिवस। बिल्कुल। और खुशबू कुमारी जी भी लिखते हैं, निकले जी हमारे भारत के प्रति देशभक्ति देखकर उनकी बहुत अच्छा लगा, और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आरजे परमार जी। तो चलिए गाना सुनवा देते हैं।

0: शुरू हुई थी, कुछ याद है?
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
0: कुछ भी नहीं?
2: नहीं।
0: आओ, आओ मेरे साथ।

0: बहुत ही प्यारा देशभक्ति भरा गाना सुनवाया निकलेश जी की, आरजे नहीं मतलब इनकी मिसेस सिमरन जी ने। और आरी सिंधी जी लिखते हैं, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, एक से बढ़कर एक फिल्मी बातें, एक से बढ़कर एक श्रोताओं ने अपनी पसंद भेजी, आपने हमारी
1: वाह
0: पसंद को सुनवाया। प्रमा सर जी, वंशिका जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आरी सिंधी जी कहते हैं।
1: वाह आरी शुंदी जी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा फीडबैक भेजा है आपने, जो बिल्कुल दिल पर लगाया और बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, खुशबू कुमार जी कहती हैं, दीदी ये गाना सुनकर तो अपने आप आंखें नम हो जाती हैं। जी बिल्कुल, भाई सही बात कही आपने। और रूपचंद गोयल जी का फीडबैक सुनते हैं।
2: आरजे वंशिका जी और आरजे परमार सर जी, आज कारगिल विजय दिवस पर लता मंगेशकर का ये गीत सुनने को मिला, दिल खुश हो गया। और हमारे यहाँ बारिश चल रही है और मैं गीतों का आनंद ले रहा हूँ, मजा आ रहा है। रूपचंद गोयल, बाड़मेर, राजस्थान।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रूपचंद गोयल जी, आपका ये फीडबैक बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बारिश हो रही है, बारिश की वजह लीजिए, लेकिन हमारी तरफ आज बारिश नहीं हो रही, कल थी इस समय
0: मतलब तो
1: बारिश,
0: बहुत गर्मी हो रही है आज,
1: इस समय बहुत ज्यादा गर्मी
0: और
1: है।
0: रामकेश जी कहते हैं, निकलेश जी आपको दिल से सलाम, इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। और इसी बात पे अगला गाना सुनवाती हूँ, वो रूपचंद जी की पसंद, रिमझिम के गीत गाए सावन जी, अनजाना मूवी का गाना सुनते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल रिमझिम के गीत गाए सावन, बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया रूपचंद जी
1: बिल्कुल
0: आपने।
1: बिल्कुल, ये गाना सुन के ना थोड़ा थोड़ा बारिश का आभास होने लगा। गोयल साहब बहुत खूबसूरत, प्यारा और अच्छा गाना लेके आए आप, और गर्मी जो हो रही थी यार थोड़ी थोड़ी वो ठंडक में बदल गई, तो बहुत
0: बिल्कुल।
1: बहुत शुक्रिया रूपचंद गोयल
0: और निकला जी
1: जी।
0: लिखते थैंक यू सो मच आरजे वंशिका जी, और थैंक यू सो मच मिसेस सिमरन जी एंड हिज हस्बैंड कि उन्होंने ये गाना सुनवाया। उनको, उनके पति देव जी को और उनके बेटे जी को ये थैंक यू सो मच कहते हैं। फीडबैक भी लेके आए हैं, वो भी सुन लेते हैं।
2: थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर MS फरमाओ एंड आरजे वंशिका जी,
0: जी
2: एंड थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम Mrs. Simran and her husband and his son. Say thank you so very much. Wonderful radio. When we'll go to Bombay, we're going to listen to your radio.
0: Oh,
2: thank you.
0: Great.
2: Wonderful
0: thank you so much.
2: Radio in the world.
1: Yes, yes, Mr. Nicholas, please say her. यानी मैं कहना चाहूँगा आप सिमरन जी को कहिए हमारे प्रोग्राम से जुड़े और कोई अच्छा सा फीडबैक भी दें, है? तो निखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिमरन जी की पसंद का ये गाना सुनाया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और यही कहना चाहूँगा कि निखिल जी आप भी सिमरन जी को कहिए कोई अच्छा और खूबसूरत फीडबैक अपनी प्यारी और मधुर आवाज में हमें भी सुनाएं। और अब
0: रमकेश जी
1: जी
0: लिखते हैं रूपचंद जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी, मजा आ गया। और रूपचंद गोयल जी का फीडबैक है, वो भी सुन लेते हैं।
3: रिमझिम के गीत सावन गाए गाए भीगी भीगी रातों में, वंशिका मैम जी और परमार सर जी आपने मेरी पसंद का गाना सुनाया। एक तो बारिश हो रही और एक बारिश वाला गाना सुन के डबल खुशी हो रही है। आप दोनों को दिल से धन्यवाद। रूपचंद गोयल, बाड़मेर, राजस्थान।
1: देखिए देखिए देखिए रूपचंद गोयल जी, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के मुझे, और लगा कि आप जो स्टार आइडल का जो प्रोग्राम होने वाला
0: अच्छा।
1: है उसमें आप फिर भी जरूर भाग लेंगे। आप अपनी खूबसूरत आवाज के साथ उसमें भी भाग लेने की कोशिश कीजिएगा और फॉर्म भरिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब। और
0: जी
1: वंशिका जी हम चलना
0: जा
1: चाहेंगे,
0: लेना चाहेंगे।
1: और जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि गाना सुना के जाऊंगा मैं अपनी पसंद का हकीकत फिल्म से, तो वंशिका जी सुनाइए और उसके बाद मैं आपसे और वंशिका जी से के प्रोग्राम में मिलता हूँ आपको 7:30 बजे, जो
0: अच्छा।
1: अपनी लोग सबकी सभी श्रोताओं की फरमाइश भी सुनाएंगी और आपकी पसंद के गाने भी सुनाएंगी। तो उस प्रोग्राम में वंश के जी के साथ मिलूंगा जरूर मैं आपसे, और होस्ट का तो कोई एक फीडबैक भी दूंगा लाइव। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, और ये मेरा प्रोग्राम और मेरी ये आवाज़ और मेरे गाने सुनने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने जो फिल्मों से संबंधित बातें मुझसे पूछी उनका भी जवाब आपने सुना, अच्छा लगा मुझे, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी फीडबैक को ध्यान, खासकर निकलस जी और कौन से सरोजी सेठी जी और खुशबू जी और क्या नाम
0: यानी
1: है
0: सभी

0: देर के लिए कोई फीडबैक देने के लिए। तो
1: ओके जी, तो आपसे भी सीधा लेना चाहेंगे, बस यही कहेंगे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, और सुनते रहिए रेडियो गाना जो बजाते रहो दिल से। जी बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल, और फीडबैक दीजिएगा तो मेरे प्रोग्राम के बारे में, अमन जी के प्रोग्राम में और वंशिका जी के बारे में प्रोग्राम में,
1: जी जी
0: कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम।
1: जी खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, एंजॉय कीजिए फरमान जी की पसंद को, बाय
0: बाय
1: बाय बाय
0: बाय बाय।

0: वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ ज्यादा है। आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है, जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

0: कुछ याद आया रत्ना?
1: मैं रत्ना
0: रत्ना

0: लड़ेगा।
1: देखो जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले, हाय। देखो जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले,

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: तेरा लंबा है।
1: अगर कहां से तू बड़ा ही निकम्मा है, जाके चुप जा तू वहां जहां तेरी अम्मा है।
0: आ आ इधर तू आ आ,
1: जा जा घर तू जा जा,
0: अरे आ आ इधर तू आ आ,
1: जा जा।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

पर लैला मजनू शिरी और फरहा इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हो चकाचक फिर लो पान चबा। आहा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।